0: Fact. Right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी सशविदा कतासु के हम सुखपली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म होल ग्वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गई। पता याद मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
3: रेडियो दिलवर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
4: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कमजे चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंद आवाम द खिदमत लपारा मौजूदी चिपके डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट दैतवार परवज लस बजोना तरमा खाम सलोर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिरना तर जुमेरात रस कोरे सहर नहो बजोना तरमा जिगर सलोर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट दैतवार परवज यवोलस बजोना तरमा स्पखिन ब्रे बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरी माजीगर द सलूर बजोना तरमास होतन अतो बजो पूरे बाओपीडी कवि जमुन सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नो टू जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर आयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
5: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

Spug. Oh. Dua. Any 0333 75 75 672 पति नंबर बने कॉल लो बल्कि मैसेज रहो ले कॉल बिल्कुल ना कोई जी और उसमें सिर्फ पल नंबर

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

कॉल करो दोबारा जमा दो स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर 0312-8888-150 जमा दो स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर सलाम भाई संगीज सुमेरा नजरत बहलोलाना सलाम कबुल की।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस।

0: ये सब सहारे अपनी जगह मगर ये कैसी तेरी कमी दिल का गई मेरी। खुद गर्ज लोग किसी की नहीं होते।
1: मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दिया मारी मारी मैं सांसा
0: लोगों ने समझाया था वक्त
1: मैं रुल दी मारी
0: बदलता है
1: मैं सांसा
0: और वक्त ने समझाए लोग बदल जाते हैं।
1: रुल दिया मारी मारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दी
0: वो जो कहता था तारे तोड़ कर लाऊंगा उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पे। वोरे वोरे दा वोरे।

0: मर्जी
1: मोहब्बत न सही मेरा बरम ही रख लेते हैं। मैंने लोगों को तुझे अपना बनाया रखा था।
0: मैं तक तक हारे हारे मैं तेरे तो
1: मुझे पत्थर सा दिल दिलाओ भाई। मुझे इंसानों में जीना है।
0: मैं तेरे तो बारी बारी सा सा हारे हारे
1: कभी मुझे अरे कभी खुद को मेरी जगह रख। तुझे तरस ना आया तो छोड़ जा। सुन भाई।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस।

0: वो गूंगे श्रीवले नवाए हलूना ओके चिट्ठी रस्यात मनन को शुक्रिया अदा गई मादा
1: अंचित बल सरवादी कवले
0: बल हुआ है मना यो बल पिशा वर्क दी का